0: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो नाचे दम्बा लादोला जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथ ला अंक 8 तथा नला विश्वासी चमक बसी खाऊ ना बियोग तामाङ हरेक स्वरी जब याङरे याङसी यागरखी महत्वपूर्ण निर्णय लादोला तिग याङ नियन्त्रण लावरी हाम्बा ताग्दे ला बारे चिन्ता लाभ छनोत लाला वा परमेश्वर से याङ दा पिनबा अद्भुत आशिष करेदा लागे थुजेसी पिनबा ताम्रे ध्यान केन्द्रित लाभ छनोत लाला भजन संग्रह 118:24 तिनीला दिन परम प्रभुसे सृजना तबा हिम्बा चुरे याङ आनन्दित हिम्बा थेन्दे न्यू हरेक छोरी गच्छा परमेश्वर से रङदा पिनबा आनन्दला बारिदी सोच्दियो रङला जबा रोग अदेला बारिदी सोच्दियो रङ से चावारी हम्बा चाबसेला बारिदी सोच्दियो रङ से कनबारी हम्बा क्लानबा बारिदी सोच्यो रङला फोबोफिला छानेला बारिदी सोच्दियो याङ बेनान से याङला विश्वासला परीक्षा किनबा कठिनाई देन कष्टकादे अनुभव लाभमुला याङ रङदान न्यै बारी अहम तिग्दा परमेश्वर याङदा थे कष्टकादे सहला बारी अनुमति पिन्छुला थे कष्टकादे से याङदा नेमुला थेन्दे याङला तिङ दोब तमुला जब दोना याङ थे अजब तमगादेरी ध्यान केन्द्रित लसुमुला याङ दुखा देन पीडा से प्लिङबा लुई बिटाप्ता लला तसै याङ से अर्को ग्याम एन अपनाउदेला हमला याङ देन दाते तबा जब तामगादेदा जब छनोट लाबरी हमला देन थे तामगादेरी ध्यान केन्द्रित लाबरी हमला याङ देन आरेबा तामगादेरी वा विगतरी याङ द तिगा तबा मुला विवा ताम्रे ध्यान केन्द्रित लाबला सट्टा बिला 3:22-23 परमप्रभुला गेन प्रेम से लामा याङ भस्म तबा अरे परमेश्वरला कृपा।